नंगि मिंगलेन तबु सोन जबा नमहन बियु थौजाल हि बहे भगवान नंगि तोंगान तोंगान ब सक्तम सिंगबु कना न खंग लोई दबगे हे जगत की मपु खुरुम जरी नखु यादा विश्व जगत की मपु।

0: आकाशवाणी फाल हुजिक नसिगे चैनल असिदा थमजरीबा थौरम सिंह मयामदा निंगसिंग जेरी चतजरीबा थौरम परेंग असिगे अयुपुंग तरुक मिनिट तरा थमजरी सीदहिदा इमाले बागपु खुरुमजबा इसै तहनजेगिनी अयुपुंग तरुक मिनिट तरा मंगा तोंगान तोंगान बा सैसुप सिंगदिगे मणिपुरी मतम इसै अयुपुंग तरुक मिनिट कुन मंगा रेडियो क्लास की चनी मरफू माथोई सुबह तांकता क्लास सेवेन की मणिपुरी नोंगिन की लेसन नंबर फोर ए थमजिरी अयुपुंग तरुक मिनिट निफु थरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगमांगल होना पुथोचब थरमनी मखा तारपद फिल्मी खोंजल नाचोम थमजिरी अयुपुंग तरेट नसी नाचोम फंगीगनी तोान तोान सैसपी मणिपुरी फिल्मी अयुपुंग तरेट मिनी निफु पेट्रोइस डे थोरमसी स्कूल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इबोटोम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मीमा की तेमांग लोना पुथोचब थोरमनी अयुपुंग निपाल नहारोल की खोंजल नसी की थोरम अखोगी इनवायरमेंट हाइब हिरम इनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फिल्म मेकर जितेन युमनाम उन्न वरी साबा उनवीगदब राहुल हिदंग अयुपुंग निपाल मिनी निफु निथोय गुड मॉर्निंग मणिपुर फिल्म की इसई अमुब चंदन की फिल्म इसई तहनजगनी अयुपुंग मपल मखाय गीत थमजरी अयुपुंग तरा मिनिट अनी रेडियो लीला हिरानब थमजरी अयुपुंग तरा मिनिट कुंथ्रा निथोय लीला सानवीगदब रूपलया थिएटर तोान तोानब फिल्म इसई लाथोक्न तहनजगनी अयुपुंग तरा मथोय मिनिट कुंथ्रा निथोय गुड आफ्टरनून लेडीस कोंगपाल कोंखाम लेकाय की लमजिंग मेरा बीएलएफ मेंबर नुपी मेंबर सिंगना तोान तोान थोरम सिंह लाथोक्तना तहनजगनी थोरम लाथोपीगदब अयेकपम प्रियोबला गांगोम इबेयमा थोरम पुथोकप थोकचोम रेनुबला गीत मला थमजरी अयुपुंग नुंथिलपुंग अमगमिनी तरा अरब फम इसई मतम इसई लाथोक्तन तहनजगनी नुथिल पुंग अमग मिनिट निफु वेस्टर्न म्यूजिक पुंग अनी मखाय चिंगलोन मापल की वांगदगी थोरमसीद ऑस्ट्रेलिया द लेबा गोविंद सोग्रा पुंग उनदन वरी साबा उनवीगद बी नोंगतमम रोमा थोरम पुथोप तेंगबांग बा इरेंगबम अजित कुमार मिते थोरम पुथोप बा नोंगतमम रोमा नुथिल पुंग अहुम मिनिट मंगा रेडियो क्लास चनी गम मरफुनी तोय सुब तांकक थमजिरी नुथिलपुंग अहुम मिनिट कुंथ्रा मंगा क्लास सेवेन की मणिपुरी नोंगिन की लेसन नंबर फोर बी थोरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंमांग लेना पुथोचब थोरमनी नुथिलपुंग मरी मिनिट मंगा उन्नखीसी मुक्तंगा थोरमसी द मेकअप आर्टिस्ट खाइदेम जेनी जेनी खुराएगा उन्दना वरी साबगे अहब तांक उनवीगदब कैनी कौखाम थोरम पुथोप थोकचोम रेनुबला सुमांग लीला इनमगी अनी सुब तांक नुथिलपुंग मंगा मखाय लीला सानवीगदब पीस मेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन नहरोगी खोंजल निमिदांग वरमपुंग तरुक मिनिट तरा खुंगंगी थोरम नुथिल निमिदांग वरम पुंग तरुक मिनिट निफु निमिदांग पुंग तरेट मिनिट यांक निफु मंगा मतंग वाफम फंबीगनी पुंग मापल मिनिट मंगा लव एंगल थमजरी निमिदांग पुंग तरा फंबीगनी गीत मतांग सिदा नसी की थमजरी पथोरम सिंह निंचिंग जब लोईजरी आकाशवाणी इंफाल हौजिक दिल्ली दगी रिले द इंग्राजी द पाओ ताप फंग भी रगनी
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary for Nurse One in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to the national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. We have a report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है.
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL cbse.onmarks.co.in is the testing site only with the sample data for internal testing and review purposes. CBSE emphasized that no security breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work. The board stated that on-screen marking system has been implemented to enhance transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. The board also reassured the concerned that robust safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana and Uttarakhand for the next 2 days. IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Gangetic, West Bengal, Konkan, Goa, Odisha, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. Met Department has also predicted heavy rainfall over Bihar, interior Karnataka and the northeastern region till Sunday. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rayalaseema, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and parts of North East. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with 3 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.

nungai nungai raba tongan tongan ba thorum sing sandok tuna tahan jari ba si akashvani imphal ki megahar chama hum dasmik manga da sandok jari ba fm sangai channel dagini hauzi muk pudan lak jari tongan tongan ba saisap sing dagi manipuri matamishegi kudol खुदोल के हन बदतामी नसी थिंगवाई जम बिपिन चंद्रन सकपा दिलीप मयंग बमना सैरेंगबा मतमिशै इसे की सहयोगना इंगागी नोंगजुदा नोकचिरंबी इसे खुदोल तोगजरी तामी नसी

0: Akashvani Imphal Khetrimayum Chitrabhanu na pauk pazari ahanbada maru oiba pau security force na rajya se ki tongan tongan ba mapham de gi khuzukla yauna laloba manga fare rashtrapati dot pati murmu na ngase sikingi nathula pasa chatuna mapamatu da mathau toriba lalmishing unagani amasung gray mentri amichsan hari narcotics amasung khuzukla yonba thingina ba sarkana anti drone system install toragani Security force naraiza ase ki ching amasung tampa ki tongan tongan ba mapham sing da ti humba amasung area domination ki thabak chathari Manipur police control room gi charol amana hai security force na ngarang churachan puzila gi hongkot kul da ti humba ki thabak chathabada khuzukla kya fare fakalaba kulai sing adudi MK2 rifle ama AK47 rifle ama 303 rifle ama 12 bore rifle ama .22 country rifle ama country made 12 bore rifle ama country made .22 sniper rifle ama SBLM nomoi ani SBBL nomoi ama 12 bore MT cartridge tara humdo ID manga wireless set yauna nomoi maru khrachu yauri nimit asimakta da security force na ukruzala gi litan police station na konba mapham da operation chathabada patlai jang khulda aini yadaba moongda sasilamba bunker ama amasung AT kasung khulenda sasilamba bunker ani thugai khre mapham asidagi ID ama pompi nomoi ani bofen radio set yauna nomai maru kharasu phangbangam ki amoromda miyam dagi nam haduna sel khaiba amasung aini yadaba thabak toramba singda chenaba miyu sing faba gi thabak su makhatana chathari hauki baning thokaba numita thobal jila gi forest gate manakta leiba maya ke thel dagi lalhoba ani faki security force nangarang Imphal is jila gi nongada coming area dagi lalhoba ama jila asemaki kyangoi santipur maya leka dagi lalhoba ama amasung Imphal west jila gi kawa lilando lampak dagi lalhoba ama ga su fagat ki Musama singi seng laba kumbhai idul jiwa hayang pangtuk lagani numit asida tongan tongan ba masaza sing dan nama sonbegi thoram sing pangtukani Imphal gi tenki wali masaza ta ayupung taruk minit nifamunga dan nama songani hata masaza ta ayupung tari makhaida golapati jama masaza ta ayupung nipan da sadar bajar masaza ta ayupung nipan makhai amasung babu para masaza ta na ayupung mapan makhaida idul jiwa gi namas pangtukani hairi Manipur ki sangnar ba layak pa artist sing oi ba anoi haina mingthon ba numi mangani chathaga da ba art exhibition ama ngasi dege kokatya da leba Imphal art gallery da horgani art exhibition ase thasi ki kutra ma thoi fa bo chathagani exhibition ase da ek ba lai amasung sculpture sing utkani tabir ba pao se Akashvani Imphal de gini Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi sikingi nathula pasa chatuna mapamadu da mathau toriba lanmi singa unagani mangna Gangtok to leba Sikkim University gi convocation da susaru yagani magi nimit humni khongchaki aroiba nimita hayang Gangtok ki Paljor Stadium da pangtok pathorum amada Sikkim Police da President Police Scholar khosinagani ngarang Rashtrapati Murmu na Orchidium amasung Namyat Institute of Tibetology da su chatki Griha Mantri Amit Shah na hairi drone ki khutang da leba aste gi miram da narcotics amasung khuzukla yonto gansin toba tingna na ba sarkar na lakadari ba thataru ki manung da anti drone system install toba ki thabak loshin na ba honar gani Rajasthan gi Bikaner zila da leba sanchu border outpost da pangtopa thorum amada BSF personnel sing da wangang ba da Griha Mantri na hai leba ase gi ngankhoi paring da ki helakpa khudingma hakchin na amadi maru oina lokbagum masigum ba thabak thong sing da mateng pangse leba manung gi oiba hiram kya da su hakchin na lokphum thoi mang na hai ashigum thabak thorum sing da chenaba myu sing ma thak da sarkar na akan ba thabak lakhot kani sri sahan hai border security ma pangang kan khanna ba khonna ba da bsf armed forces local administration ama sumyang oi ba multi security yam namak tangai fade lebas da mitop sang silak pa amasung ate maram sing na hana leramba missing de gi hengalakli ba ase thena na ba kendra na awang ba thaki committee ama sem khre Social media da thagalakpa warol amada Griha Mantri Amit Shah na hai committee asi Supreme Court ki hanegi just Prakash Prabhakar Navrekar na sabhapati oigani masida Census Commissioner amadi hanegi IS officer Duga Sankar Mishra hanegi IPS officer Balaji Srivastava amasung economist Dr. Samika Rabi Yauri Griha Mantralogi Joint Secretary Foreigners Wana Member Secretary oin committee asi de yaugani Griha Mantri na hai mitop sangsilakpa amadi Atai maram sing na demographic ta chau na akai ba piduna leba sigi hojik oriba amasung tung da achoba sing na ba ama oira clip Mamang Chegi Ningtam Numit Palan Thorum da New Delhi degi Lal Kila degi Wangang bada Pradhan Mantri Narendra Modi na Leba Asita Demographic da Owan ba Lali ba Asigi Matang da Awam Wattaki Committee Sem na Naba Lok Thokki Bani.
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: लेबा की कोनु न्यू दिल्ली दा नुस की पिबम काय हेन मोसल लपसि थिने न बा पाखा लेबा थब सिंगि फिबम यंगशिन बेगि मिपम अमंगरा केंद्रीय एनवायरमेंट फुटेज एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री भूपेंद्र यादव अमसु न्यू दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सर यादव न पांग थोखरे मिपम अदित श्री यादव न निंगथम ता लाटिंगै मंगोन न कुप न खनरब मतुंग द अखनब थौरांग क्या पाखतुना फिबम से लाक्षिन अब होन बगि तंगाइ स्थपद ब क्या पनखि हेरमसगी मतांग दा होजी पाबग ओइना दिल्ली सरकार ना पाखले वथबक सिंगसु मंत्री ना थागत पफुंग दोखे मांग नहाय सरसगी अकोबे द ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संगत प मथौ तारे मखाताना दिल्ली मेट्रो नेटवर्क मपांगंग खनहंदुना मियाम द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिन नबद हेना कुदुंग चाहन बसु मांग नफोंग दोखे सोशल जस्टिस अमसंग एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ना गरंग न्यू दिल्ली द पीएमएजेएवाई पोर्टल अमसंग AJAY mobile apps hokdokre mobile app asina schedule cast ki oiba schemes sing digitalized toba amasung mapung phana chanhan bada chawna mating oragani social justice amasung empowerment mantralo in hai lokolog liba khongthang asina pradhan mantri anusuchi jati aviyuta josna PMAJAY scheme karamba pibamda chalai dibige habadukumna yingshin bangam halagani royal challengers bangalore इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल चंखरे गरंग हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला द क्वालिफायर वन गरंग सानी के मैच में द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस पर रन मरफुदानी थोई द थोईखरे टॉस कम दुन हाना बैटिंग टोकी बा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपीब ओवर कुंडा विकेट मंगा तुरग रन चनी यंखई मरी लौखी मधुकी पाखुम द गुजरात टाइटंस ओवर टर्म अपन द बॉल अहम द विकेट पुनमक तुरग रन चाम हुमफुनी थोई लौखी नसे फोंब पाउचे सिंगी मरु एब पाउगी द महौसी नौरेम विक्टर लेरे विक्टर
2: Tagajari Chitravanu Laibak asigi demography da ahongba lakpa amasung mitop sangsilakpa singkup na yengsinaba center na high level committee msemkiba nagagi miyoi taruk faba da chenabani haiba miyoi mari police na fakibagi pausing na ngasi phongnari ba pauche singi maroiba pausing oiri aina yadaba mawongda mitop sing sangsilakpa amasung masina lamda masigi demography da ahongba kaya lakliba si yengsinaba center na high level committee semkre haiba pau people's chronicle gi ahanbe headline tauri pawasi manipur mail da su ahanbe headline tauri पावसी का मरी लेना मणिपुर की डेमोग्राफी दा अहोंग बलाक पर यंगसिनबा सेंटर ना हाई लेवल कमिटी अम सेमलक पर तराम ना ओई हाइना हानगी मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन फोंगदोकी बा वफम नहारोल की थौदांगी आहान बे हेडलाइन तौरी सांगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा खौपुम दा कुकी मिलिटेंट सिंह ना कापसिनदुना लांदारा ख्रे इमुंग अमगी मियो अहुम सिनिंग सित नाथोक हौरे हाइना आहान बे हेडलाइन तौरी नेमचा की गेंदा मराल सिरकपगी मायोकता कुकी सिंह ना कांगपोक पीदा रैली चटक्रे हाइब कैप्शन की मखादा नगा फाबद चेनबनी हाइब मरी कांगपोक पीदा की सिक्योरिटी फोर्स ना खुलाई का कोना ना फारे हाइना सनालाइबाकता अहान बे हेडलाइन तौरी पोकना फंपाउचेदा सेनापति दा गारी सिंह पंदुना लेरकपा नुमितारा मरी नी सुख्रे गारी सिंह इम्फाल दा पुरकना बगी दमक मोटुआ की मिहुत सिंह ना सीएम गा उनक्रे हाइना अहान बे हेडलाइन तौरी गवर्नर ना यंखई निथोई सुब सुमांगलीला फेस्टिवल हौदोकलदुना मसिगी फंबाकना नुसी चानन चानब पुरकना बहोना बियु हाइदुन अपील तौख्रे हाइब पाउ हुयनलान पाउगी अहान बलामाइद फोंगली मणिपुरगी एस्ट्रोफिजिक्स डॉक्टर रोनाल्डो लाइस्रम ना नौन पुथोकपा प्रोटो क्लस्टर लोकताक प्रोटो क्लस्टर हाइना मिंगथोन ख्रे हाइब पाउ सांगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन गी अहान बे हेडलाइन तौरी मितै मितै अमसुंग नागागी अपुनब नेटिव पीपल्स कमिटी मणिपुर कौबलुक अमसेम ख्रे हाइब पाउ गानफ्यू मेलगी अहान बे हेडलाइन तौरी कुकी सी एस ओ सिंह ने थमलक वफम एन पी एफ मणिपुर ने यानिंग फोंदोकी पाउ हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस अहान हेडलाइन तौरी चित्रवानो
0: थागचरी विक्टर अरोबद मरोब पाउ अमुक सिक्योरिटी फोर्स ने राज्य की तोान तोान मफम खुजुकुला यौना लाहौब मंगा फारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना सिक्किम की नथुला पास चतना मफम मथौ तौरीब लानी उनगनी गृहमंत्री अमित शाह हरि नारकोटिक्स खुजुकुला यूनब थिंगनब सरकार एंट्री ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल तौरगनी पाउ लुजरी

मखलमथल की थरुम के संदोकन तहंजरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल देगनी हजी मुख संदोक चरी पेट्रोइट्स दी थोरमसी स्कूल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इबोटोम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मीमा की तेमांगल ने ना संदोक चब थोरमनी

0: लो मणिपुर वार कौ मधु करम हूँ नंगलब्रो
1: खंग दिए ब्रिटिश ना होरखिब नत्रो
2: एरा लांदबु होय माय हाइदन हेक्त लंदा सिलप याब्रने मतमदुगी निंथौ मचा सिंगि मरकता उंखटनाबा निंथौ खुबम मुनरकपगि वहौदा खाइबुं खाइबुं तानरकपा तो अदुगी कुदों साबदो मधु ब्रिटिश न लौगी बगि वानिदा
0: ओ निंथौ मचा सिंग हाइरिब सिदने टिकेंद्र सिसु याउरिबने मखोय पुमना मसि मनाव गाक्तनि
1: निने मखोय सिंगदबो कनागि मचानो हाइबदी करम बनिंग थौगी मचा सिंगनो
0: ओ महाराज चंद्र की टी ने मचाई बुंग टिकेंद्रजीत सुरचंद्र कुलचंद्र पकासना अंगौसना जिला गंबा
2: टिकेंद्रजीत से चंद्र कृति महाराज की मरी शुभ मचानी मपाई बुंगो महाराज चंद्र कृति ना कुमलिसिंगी पान मरफू तरुकता नोंगा खरे अदुगी मतुंगदा टिकेंद्रजीत की मयांबुंग अहल सुरचंद्र निंथौवैकी अनि सुब मयांबुंग कुलचंद्रना जुबराज दुगने टिकेंद्रजीतना सेनापति वैकी मखोई मसिल मनाओगी मरकता पकासनाना नापल कारकपदगी कैदौरगेबु मसिल मनाओ मरकता उंखटनाबामा थोरकी मदुना मरम वैरेरगा नकपाक नकपाक तानरकी नकल अमदना पकासनाना लुसिंखी अदोगा अतोप नकल अमदना टिकेंद्रजीतना उंखटनाबदु सुम सुम चावखलखी टिकेंद्रजीत की वखलदा मयांबुंग निंथौ सुचंद्रना मनाव पकासना की मिसंग लई एन लौगीदना याम नवारोगी
0: निंथौ सुरचंद्रना पकासनाबु कंखतुना थमी हाइबगी मालोमदगी मैरिक पीदगी मैजाउबी ओइकी हाइनै
1: करी हारी नोने नेदुदि
2: सेसे दो हाइगे मैरिक पीदगी मैजाउबी होगी हाइबदिने मयांबुंग निंथौ सुरचंद्र की मिसंग मिखाई नाइबगी वायल पेंदबदगी टिकेंद्रजीत ना मनोय बुंगो अनि हाइबिदि अंगौ सना अमदि जिला गंबग लुइनना निंथौ गि मयक लान होय मयांबुंग अहल सुरचंद्र बु निंथौ खुबम दगि सिंथै अपिकपा वाफम दगि सुमसुम सावथोरक दुना फिबम दो लुसिलकि मधुबुनि मैदिक पिदगि मैजाउ बि हौबा हाइबिस
1: अदुगि मखादि
2: मधुगि मखादि बुंगो मयांबुंग अनि सुब कुलचंद्रना निंथौ वेरेदो अदुगा निंथौ सुरचंद्रना कमदौ गि हाइबबु अंग्रेज सिंगी मफम द संगजफम लौदुन लेकि
1: अदुदगी टिकेंद्रजीति
0: ओ टिकेंद्रजीत नने जुबराज ओइरेदना थौदोक तो मणिपुर गिनि पुवारीदा कोनुंग लालहौ हाइरगने खंगनखि
1: आ
0: थौदोक दुना मरम ओइरगा ब्रिटिश सिंग अदुना कोनुंग गि वाफम दा खुद थिंजिलकनाबगी खुदों जाबदो थांखि मखोइना निंथौ कुलचंद्रदा टिकेंद्रजीत पु सिनौ हाइबदने यादबदगी दरबार फमसी हाइसिनरगा फानब होनखिबने माइ पाक्ट्रबदा नुंदांग ब्रिटिश ना कोनुंदा लानहौखि अदुदा ब्रिटिश ऑफिसर मंगा मैतै लानमिना हाथखिबने
1: अदुदै मखादि कमदौख्रेनिने
0: अदुदगी ब्रिटिश ना माइकै अहुम हाइबदि कोहिमा सिलचर अमदि तुमुरोमदगी लंदारखि थौना फना मैतै लाइमिसिंगदुनाने ब्रिटिश का अकनब लंबा तौनखि अदुबु मसिंग यामलब ब्रिटिश लानमी अमदि मतिक चारब खुलाइ सिंगदुगी मांगद करिदि तौरुनि मैतै लाइमिसिंग माइथिखि एखोइना जथोकसारिबदि माइथिगनि खंगना खंगना एखोइगि लानमिसिंग अदुना लानथेंनखिबदो अदुनि मसिदा मखोइबु मथौना फबा माइराइबाग निंबा अथौब कौरुइदबगि मरमसिबु लैब्राने
1: अदुगा कमाइना टिकेंद्रजी थंगाल जनरल खोइना फासि तौखिबनो
0: ओ अदुसु हाइगिसे ब्रिटिश सिंग अदुना ने माइ पाक्लब मतुंगदी मखुई मायोक्त लेखिबा मियोय सिंग अमत लेमन थाखिदि
1: कमाइना नोने ने
0: लानदुदने याउखिबा मणिपुर गि लानमी अयामबने मखुइनने फाजिलम कयामना सिबगि जायराखसु पिखिरम मखुई मायोक्त लेबगिदमक जुबराज टिकेंद्रजीत अमदि थंगाल जनरल बु ख्वाइरमन कैथेलगि मि चोन तिलब मफम फैदाबुंदने फासि तौदन हाथखिबनि
2: फैदापुंग हाइबदो मियाम तिनबा मफम निको निलिसिंग कयाम तिनबगी ममांगदनी फाक्सी तोक्रिबदो
1: इदो मदुबु इंगशो क्यादनो
2: मदु कुम लिसिंग अमग सानिपान मरिपु तारा मात होइगी अगस्त की तांग तारा हुंदोइगी निमिदांग वरम पुंग मंगा ताब मतन निबु
1: ओ नुमितु निने चही खुदिंगी अगस्त की तांग तारा हुंदोइदा पेट्रोस्टी हाइना पांगथोंनारिसे
0: माने माने मखोइबु फासि तौखिबा मफमदुने हौजि बीर टिकेंद्रजीत पार्क हाइनने खंगनारिसे
1: 아두디 티켄드지 탕가제네르 코시 헤로니네
2: 마니 코시 헤로옹 아크니 코이드 부나티네 마레이박 기다막타 시버키드나 란테잉나 키바 타와이크 키바 푸나막토 헤로옹 아크니
1: 브리티싱도 미누시암레이테 란수 호비바 아두가 란로르가 무 아토워싱보 하토비바
0: 오 아두니네 앙암바 하이리샤 하파다 나타나 카야마수 마푼시슈바 파도 타할리바니냐
1: 헤마 이도 아이디 카이노마 하이바카 호레
2: 거리 카 호르게네
1: 닝타쿨라 젠라도 마디카 마이도크레
2: 마학 수이붕오 사이락 삐키 칼라파니 타바 아이드나 안다마니 코와다 닝타쿨라 젠라도 로이 타크리바니
0: 아 이닝타쿨라 젠라가 로이나나 란미 카야마수 안다만 니코발기 이타타 로이 타바다 야오키 하이시부 숨자라니 바부아
2: 아주 많이 따이
1: 이도 한베기 닝타우슈 젠라두디
0: 오 닝토슈르산잔나네 브린다반다네 사키 마파모드데 아둠 농가키
1: 이도 마니푸르기 부아리시슈 앙악바나 빅탄자니고
2: 곰바 능기 세렌기 와리데기 아요 그래 아두부 강릉리부도 파르바니 마니푸리야모이나 마니푸르기 부아리 강바이브세 땅아이파다바니 마시디 카직타니 강가다바 야암나레이디고
1: 나시기디 샤이달로샬시 이도 와레 나사이 이동나 아차포 레이바기 페샤피니 하바도 피로드나
2: 바이사부디 피도리바니네 아도 낭낭아랑 티루바 세링도 마텍 암탕워르수 티로우드나 하 이독 따게 하이바
1: 호직포 고나 티라게다
0: 아 티로우 티로우 호직막 티데베야로 아까도 위고나 티도이바 호직 티드라가나 아사포사노 페샤수 피드다바
1: 아스 티람나기도
2: 아 하우로 하우로 하우로 따르스
1: 세링기 마밍 아타우바 아타우바 낭내 예람발레남 담나 담나 파이토크레 타모이데기 레카이데기 이레이박시데기 아두부 칼리 티바디랩로이 가다이데부로리바 카나기 타모이다 낭기 콩골리닝바 마파리 리싱라키니 타자바나망징에이 누미타나 레이리카이 낭기 나틱슈라이키니 아두나 아타우바 낭기 레이남부티키니 타모이 쿠딩짱두나 할라키니 칸나가이리 마땀기 통질다 랩라두나
0: 에 까이누니 하시보 로이라브라냐 헤 파나디 상키다이냐
1: 로이부디 로이드리 까오크레다 농어 퍼제나 티라게
0: 호이냐
2: 나랑다 티루부세잉부 까오크라바 마기시 까오만데
1: 이더우가 니니가기 망다 티바시 이까이에
0: 에 까두부이 까이두이바
2: 에 파레 예 이슈나 티바나라 강데 아 이더우디 요노노 바자그레 아두부 마두더기 해나 카라 파자나 티나나 바 아무 호나기 베타리코
1: 아이나 치바다 와이 카라디 제나크레 니니디 칸람나니
0: 아이나 칼리네 파레 상담나 바두다 파르지 타크레다나 마두 망아이 게도르게
2: 나니네 이바다기 디 이슈나 세리응오나 티두오록 부드는 부 해나 파자람 거니 마나 피레겔 얼라
1: 호이도
3: Taviri, Petroid City, Thoromasi, School of Educational Technology, Ibutombi Institute of Education, Mimagi Tengmangaloinana, Shandok Chabathoramni. Oziya Muktaminasi, Brahmachari Mayum, Netachandra Sarmagi, Naitam Konjelda, BK Panjimayumna, Sairengba, Matamishe, Ingagi Nongjuna.

0: आकाशवाणी इंफाल हुजे मणिपुरी दा मरुए बपाओ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल हुजे फावा की मरुए बपाओ सिक्योरिटी फोर्स संगरांग चुरा चान पुजे लगे हेंकोर कुलदा थी हुंबे की थपक चथपदा नोमयाउ नुक सुकले के आफारे सिक्योरिटी फोर्स द उखरुल जिला गेली टेम पुलिस स्टेशन कोन बा मफम सिंह द सारंबा बंकर हुम थुगाय खरे अमसु टोंगा टोंगान बा मफम सिंह दगे लालहौ बा मंगा फारे मुसमा सिंह सेंग लबा कुंबई इदुल जुआ हे पांगथोक लगनी नुमे असिदा टोंगा टोंगान बा मसस सिंह द नमा सोन बगे थोरम सिंह पांगथोकनी मणिपुर गे सांगना रबा लायक पा आर्टिस्ट सिंह ओइबा अनोय हाइना मिंगथोन बा निमि मंगानि चथगतबा आर्ट एग्जिबिशन अमंगसिदिगि कोकटिते लेबा इंफाल आर्ट गैलरी द हरगनी आर्ट एग्जिबिशन असि थासिगि कुत्रामथै फाव चथगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गि सिक्किम कोंचकिंग असि निनि चम्ब निमित्त नथुला पास चतुना मपम मदुद मथौ तोरिबा लालमि सिंग उनगनी महांगना गैंगटोक सिक्किम यूनिवर्सिटी गि कन्वोकेशन तसु

कया गिमती वाजरीबा अखोगी लैंगाक भारत न मामा मचा अनिबू अखोगी लैंगाक भारत न मामा मचा अनिबू मसी ओइब चिनजाकपू साधु नबु मखोइना मसी ओइब चिनजाकपू साधु नबु मखोइना मसा म उफनब मसा म उफनब प्रधानमंत्री मातृ बंद्रा योजना हौदोग बिखी तेंबांग ओइगिन बगिदमक लुपा लिसिंग मंगा मंगा तेंबांग ओइन बगिदमक लुपा लिसिंग मंगा मंगा कयाद लाइबक फख्रबनो मतम मसीगि नाउपुरीबी कयाद लाइबक फख्रबनो मतम मसीगि नाउपुरीबी।

ये आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। मैं वाईकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। पहला पत्र मिला है हैंगांग मयाली इकाई से वाकम्बम जॉन, विजय सना, अनिता, दिनेश, सोनिया और नोंगपोक शेखमाई शिखोंग से सोयबम पतेश्वर का। वह सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में एक गीत। गीतकार है संतोष आनंद और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाजों में। गीतकार है महबूब और संगीत A.R. रहमान का। सुनना चाहते हैं लुआंग संगम ममालिक का, इससे लोकसिकाम रोमावती, सना हनबी और शर्मिला।

अगली फरमाइश आई है वांकई से अनीता सिंगजमई से रेविका बेबी संगीता हेमोलता टाइगर और कक्सिंग से गुनीवाला और देजी की वे सुनना चाहते हैं फिल्म हम दिल दे सके सनम से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में ये गीत गीतकार है महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का

साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म आक्रोश से जावेद अली और अनुपम अमोट की आवाजों में। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का। सुनना चाहते हैं नाहरूप से सुनील, नंबोल से श्यामचंद्र और खोजुमान से जितेंद्र।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म तमाशा से मोहित चौहान की आवाज़ में गीतकार इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का सुनना चाहते हैं ककवा कोनांग फैदेकवी से विशोरजीत अचौबी कमेंग साबल से कोयरेंग चाउबा थोई थोई संगीता तोम्बी इनाउबी मयांग नांगजिंग तानिंग से सनाहल और आकाश।

मखल मध्योगी थोरम सिंह लेप तने संदूक चरी बासी आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसेक लांथोक चरी अरीबा मणिपुरी फमिसाई सिंह मथंग मथंग होइना

मखल मथल की थौरम सिंह लेप तन संदोक चरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दगिनी हौजेक पुंगफम सिदा ताबिरिबा मयाम सिंह की दमकता लांथोक चरी मणिपुरी फिल्म सैसिंग मथंग मथंग होइना

0: मखल मथिलगी थौरम सिंह लेप्तन संदोकचरीबासी आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजेक लांथोकचरी चिंगलोन मापलगी वांगमदगी थौरम असिदा ऑस्ट्रेलियादा लेबा गोबिंद सौग्राकपम ग उनदुना वारी साबा उनाबिरीबा अमदी थौरम पुथोकबा नोंथोमबम रोमा पुथोकपद तेंबांगबा इरेंगबम अजित कुमार मैते
1: सिंगलोन मापन न कोइसिनबा पिकलब इरमद मणिपुरदगी हौकीबा एकोगी इसिलेनाव कया मालिमगी मफम सिनब थुंगना तोंगा तोंगान ब सिनफम सिंग पाइदुनामदी महिमा सिंग तमदुन लैरी मणिपुरबु मालिमद सत्ताकली मखोगी मपाउ लेप्तन तमजरीबा एकोगी थौरमनी सिंगलोन मापनगी वांगमदगी नसिगी ताकत पुजरगली ब गेस एकोगी मिहुत नोंथोमबम रोमागलोइनना स्टुडियो द लेंसिनदुन लैबिरे मखोगी आवानुगागी वारी मयाम पुन तामिनरसी
2: नसी चिमलोन मापल की वांग मध्य हर वर्थोरम मस्सी के जमाव आकाशवाणी फाल की स्टूडियो टेलेंशन बिरिवसी गोविंद चोग्राक फर्म हाउसिंग जिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोइना ऑस्ट्रेलिया की सिडनी दले बिरिबनी हान में मक्ता दा गोविंद चोग्राक फर्म बो आकाशवाणी फाल के स्टूडियो दा तराम नोचरी
3: ओह याम नोएज
2: गोविंद ऑस्ट्रेलिया है वा मफम से एक पन मतम दा याम न चाओ बा महादेश कंटिनें नमने ना एकुना लाइक तम मतम दा थेना चरे ऑस्ट्रेलिया से कर मफम नो है बसी ताबीर वो म्याम नसु याम न खंग नंगनी कर मफम नी है ना है बिगने
3: ऑस्ट्रेलिया से कंटिनें ने आई जो आई इंट्रोडक्शन हो ना क्रिकेट यंग बताई खंगे हुने ऑस्ट्रेलिया से अदु का चल कांडा कमाइन तो है बसे कैंगरू गुंबा सिडनी ओपरा हाउस गुंबा उब ना तना हान आइडिया लेगी थे यार मतुंग दा इशु आयाम पग आई की लर्निंग आई की एक्सपीरियंस ले ले ये वधगी कहाँ पंगाक तने आदो माजे याम फजे नेचर की कोई ना आ माफ़म याम फजे इसी नुशी याम सेंगी याम चौकली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नी आदो को वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज उसु आई हो सिक्से
2: ऑस्ट्रेलिया दा मटोग्राम ना चटकी है वगी वफम सिलाक चटरिंग आई सिदा मणिपुर की करम वफम तो फोपनो दुगा इमा पाबुंगी मिंग ना करी कौबा चिनाउ ने क्या सुबनो है बसी मसियाना खंगमि न चिपुना
3: आई इशाना पिजुम तोंग नाम लेकाय इंफाल वेस्ट द पोकने पाबुंगी मिंग ना गुनिन रो सौग्राक पम इमाना मोरांग थेम भुमेश्वरी अदुगा आई इचा नुपी यमले माना सौग्राक पम कांचन अदुगा आई गि नुपी हुजिक सिनि रेमिनरी से पोनिक राजकुमारी इशानु पाम लेजरे सही तरुक सुरे माना गेविन स्कूल से डोमोस्को इंफाल चिमेरोम तमकपने वन दी टेनबो इलेवन ग ट्वेल्व को एच आर डी अकादमी घड़ी लोर कॉलेज से तमिलनाडु कॉलेज तमें अना यूनिवर्सिटी मखाद चाही मरी इंजीनियरिंग तब लो
2: कॉलेज से कोई इंजीनियरिंग से तब लोबीर इंजीनियरिंग तमली होदना कॉलेज की कैंपस इंटरव्यू न सिंब कैंपस इंटरव्यू से तोयन तौनबनी लेरंगनी भारत के मनुंग थब तौनिंगे अपाब लेखिब्रा नग हौजे एब्रोड लेरीबसे अपाब मंगलान है तारे इसाद फाउब लेब्रा
3: फाउबदी लेगीदे तरम द रेड रेस सर्वाइवल अहमदी सर्वाइवल की फर्स्ट थिंग जॉब फंग जॉब फंग ज्ञान तरक कई कई खाई एडवांटेजेस रोल येगप मफम येगप कंपनी येगप मथंग मथंग लापने एक्सपोजर से अखोदे माय पाहोई इग्नोरेंट होब है मोजु खंगदब की एक्सपोजर लेतब की गाइडेंस से अखोद लेरते
2: भारत की कर्म क्रम कंपनी सिंग मफम सिंग द थबक तौबिरम बा गोविन
3: हुजिक से कंपनी से लेत्रे तौब होरप से सत्यम कंप्यूटर्स हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने तौगीबने ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल कंपनीज तौर
2: ऑस्ट्रेलिया चटप की खोसे खुदचाब है तारे कर्म
3: तो लाइबकनसु अयामने होनब तंखाय लाइबक तंखाय होनबद्रगदी लाइबक फारसु यारो आई लाइन ऑफ फील्ड आई आई टी स्पेशलाइजेशन तौबदुगी
2: डिमांड
3: कंसल्टिंग कंपनी कंट्रैक्ट तौरगा सोनाकंदा ऑस्ट्रेलिया सिडनी बेस्ड कंपनी मोईगी रेलवेज रन तौरीबा सिडनी की

मखल मध्य की थोरम सिंह लेप तने संदूक चरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसिक मखा ताबत थोरम सिंह की दमकता खुंद्राक पम आदित्य दा कुछ नजरी

0: ngai khota khisi gi thorum tabire akashwani imphal hauje amuk lan thok chari sumang lila inamma lila sanabi kadaba peacemaker artist association gi lila kangbu haujik laijare sumang lila inamma
1: sangure harin he lo phong ta le sidoi lakni hari wonam
2: asta tambai di lekai khulang mai amang sida adoi kai dori da
1: adogi dong di kaim khalunu ne mayam na hanga ga nongya ga ada duk tamina ne khunde la
2: du wai phibam sida
1: ya adogi de ne amle ai a de ti bhangak sang ngam thore si ma si be ban ge da ai be moni ne ma ma gi jiki phone ko taruk ti di bo yoram dai da toslai pi kap pani ne bo a mayam hanga ga phan phan kumur ge nodi wari no ai na sa no bo
2: ai adu phon
1: pi ro phon
2: hoita da se
1: ai chale hai wari no ai ho
2: ai kamai tong
3: salure no koi pabung sho ma sangam da ba male
2: hoy okhal ge na bani thabok su salandra bani aina saloi ta badagi yena sojan khri
3: kare
2: adu hauje je tangai phada ba lai bani na aina ta bu sha tangai phada kre khunja gi pu sina labu pa turel dana tana ekhoi ri kadai thauk su ni
3: kaino nang nang chatta biaro ye kai dong ai sasige
2: bem ai ai adu ya khalo khandre da
3: kai no khandre bo
2: sat po budi ahe ma sa pyar bani adu da
3: adu da kai doro ba adu da kai doro gi hai ro
2: ise gi manak sal re kanadre bem ai ne gi phola ba da ai pa khat parom re nang na hang ka do hang nang na paung da pakhum ai gi phamda re amta lechi du go bim ai gi laiwe ipa bu so ai ma kha ta no han ge khadre da
3: kai no kai gi no nang na du kam sun thari du bo na sa khak ta gi khan ba phire kai ri ilori bano nang lam na ma si gi khala ga a pha ba doctor moi ga da bani
2: bim
3: मधु तो संग बस हेल खुदी माँ, आई न पुतो कनी,
2: आई,
3: नंग, लोमी ओए न पोलक थी, लोमी ओए बियार ओए, नंग, नंग डॉक्टर ओए के तब नहीं,
2: आई,
3: लो,
2: आई तो ओके दा,
3: आई एंग मस्त ना बा,
2: आई,
3: प्लाटी के कवर से,
2: आई,
3: से, लो,
2: आई तो ओके बन, ओ, अदरक खोल दे, अदम पा, आई आदरे चले हैं
4: ಐಗೆ ಶಾನುಪಿಯೇಶಿನ ಮತಂ ಚುಪ್ಪುಗಿ ಹೋಯ್ನ ಅದುಂ ಶಾವುದನು ಲೈರಿವ ಶಿಗಿ ಮರಮ್ಮಮ ಶೋಯ್ದಿನ ಲೈಭಂ ಥೋಯ್ ಮೌಗಿ ಇಮುಂಗ್ ಮನುಂಗ್ನ ಅಕ್ಕೊಯ್ದೆ ಯಾಮ್ನ ತೋಯ್ನ ತೋಯ್ನ ಲೈ ಶಿಗಿ ಮರಮ್ ಶೋ ಅಕ್ಕೊಯ್ದ ಹಾಯ್ದೆ ನಾನ್ ಜೋ ದಲಾನ್ ಮಥಕ್ತ ಇಶಿಂಗ್ ಪುರಗ ಕಹ ಖರಗ ಥರೋ ಥರೋ ಓಂಧರೈ ಮದು ಶು ಮಬುಕ್ ಶುಂ ದಬದಗಿ ಲೈನ ವರಪ ಶೋಯ್ದಿನ ಓಯ್ರಂಗುನೆ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯩ ꯑꯔꯨꯕꯤ ꯄꯥꯒꯤ ꯕꯤꯃꯥ ꯅꯪꯕꯨ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯕꯤꯃꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ
5: ꯁꯥꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝ ꯇꯟꯕꯅꯦ ꯑꯁꯝꯗ ꯇꯤꯡ ꯌꯥꯡ ꯂꯤꯒꯤꯁꯦ
4: ꯑꯁ ꯑꯁ ꯑꯁ ꯑꯁ ꯑꯁ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ
5: ꯇꯥꯅꯤꯡ ꯇꯥꯁꯤꯅ ꯀꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯣ
4: ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯖꯨ ꯅꯅ ꯃꯆꯦ ꯗꯂꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯗꯔꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯎꯕ ꯀꯥꯔꯛꯇ ꯇꯨꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯅ ꯃꯅ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯪ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ
5: ꯑꯦ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ
4: ꯌꯥ
5: ꯃꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯈꯨꯗ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯋꯥꯕ ꯈꯪꯕ ꯖꯥꯠꯅꯠꯇꯦꯗ ꯗꯂꯥꯜ ꯃꯊꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯟꯊꯖꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ
4: ꯍꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ
5: ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏꯟꯕ ꯄꯥꯟꯅꯣꯂꯛꯄ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯣ
4: ꯌꯨꯅꯤ
5: ꯑꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯋꯥꯏꯅꯦ ꯃꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯠꯀꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯇꯅꯤ ꯇꯥ ꯆꯥꯔꯀꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯌꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯕꯣꯍꯦꯛ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯗꯤꯅꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤ ꯃꯣꯂꯧꯒꯦ
4: ꯍꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨꯕꯨ ꯅꯕꯨꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎꯕꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ
5: ꯑꯦ ꯇꯥ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯀꯗꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯎꯗꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥ ꯁꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯗ ꯃꯥꯁꯨꯅꯦ ꯅꯛꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯕꯤꯁꯤꯀꯥꯗ ꯄꯪꯊꯥꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ 또 뭔가 따가는 기래?
4: 알샤 그랬네.
5: 하.
4: 너는 뭐기 나한 닥터 영우 보기 세상도 보러가 닥터 딸러로 내는 척 그러버니 할라니 샬로 내야 생동소
5: 홍아 사이 생자리 바북나 바뀐 새끼보다 알력한거위 이몽식이 터바 본나막세야 뭐 보면 되나 또 한기는 내야 똥게 똥 살리바
4: 아도 북거리기 노바 낭낭 나붕다 아도 얌 샤오리두고
5: 그저 왜 샤오리는 바보 티깡 각러버 북거리 놈까 놈떠가 제 꼬이 도피배 예 빌팡내가 그래 터박 수리다바 수리는 터바 상마이건 또 인비대다.
4: 예, 시안우 비부어 네가 따오러 보라냐.
5: 호, 아잉 따오 보라 때 엄마 두는 따오는 마니. 아잉 따오 보가 싸마나 들어.
4: 예, 가나노 아마이디디야.
5: 호, 아마디네야. 아잉나 따바 아마도.
4: 아잉나 따바 아마도. 아도 가나노 봐.
5: 호, 나만 봐도.
4: 예, 이마. 시아부 루호가 보라냐.
5: 아, 루호 보가 싸마나래 이두니.
4: 예시, 가만히 따오니 따오리시디야. 아도기 와두부 나북나 강구라 해봐.
5: 다 싸우다네 아마 시방나 헤일라바니
4: 그리 헤일리바
5: 아이세야 아루비기 강나바 누바니 시막 헤일라바니
4: 에 아두디 아루비기 강나바 니바니 에나 하인 마기 마후따 아루비기 레미나라바 니바니 에나 하헤라오 마두는데 뭐야 체가니
5: 어 바북순 나모기 모이 템누시 방바오래야되나 방타르키니 로이나마 방타르키니 바보아 아 코이따 싸우나 이거라 누시바마 제가 보한다바세야 마나니꼬 파기 파기 되기네야 마 아이 코타 쇼시니
4: 야
5: 아 코이 따서우시네야 아와 파메 따자니 바붕을 크라졌고 너만 기다보다 굳었노
4: 에이 나붕어지 할래 그래 샬로 비제 짝신 맞다도 소위들은 강비바다라 이 몽상으로 샬로 아이 샤노 비시에 가라 많이 떠오니 아이네 루네 떠오시대 마시 얌나왕 그래 아 샤와 난기야 डॉक्टर है दीदी उन्हें आवरा
1: वही पब अल्ट्रासाउंड रिजल्ट ने
4: अदो डॉक्टर ने दी करी हाई रे बुआ
1: पब फट्टा बोए रे
4: हाँ करी इन्होंने हाई रे शिवा
1: माने स्कूल से पसीना वही गदरा ना इन्हें सुनकर इमुंगी था बखो दी मगता दी ऐ कोई बेमगा पबुंग ने लोई मक्षुई ना है अंगां खाऊ मापादा अकन में पोषक अमने ये शन की वगी ममी ताई लाइबक किने हाई बतो तारे पापू।
4: हाई दिने मौजे दलाल मतहता अरुम बपोट पूरा कहा कनु एन हाइनिंग मने।
1: पापू इस्तियार दो उन्धा की बुरी आउट।
4: हाँ, उन्धा की हाई ब्रने।
1: मानव दे हाई दे इन्हें सुम्सिंग न बुरी वाने।
4: आह, अरे वही बुमो नशन पिए चाह।
1: आह, होय पापू। ऐ कोई बे मना इमुंगी था बकुदी मग लोई मग तो हाई दुना मना मना इंगों दे इतत तना हाई।
4: अदो नशन पिए शिकी मनिंग थुंगा वा खरा दिले ब्रा
1: मधु वहीं गोंदा हाई थी ना, पापुंग तो का हाई लाग पुरा।
4: हाई बो बो, माउगी मापुआनी पाते डॉक्टर तमी, शिनी ने।
1: पापुंग, ऐ कोई बेमा से आई ना ग्रेजुएट तो लो शलो, गामियन की जो अम्संग नब ताऊ शिया ना, ऐ माउंदे इता तत्तन हाई बन। पापुंग हाउ जिके मत तम्दा क्लास याऊ रगदी, माने संगीने खाली बता बोक तो एक तो फंग मंगा मोई दोरी अदुना ने ऐ ना माउंदे इता तत्तन साई रिश
4: अदो ऐ गोंगा शी पा नंग गोंदा वा मा हाई गिना
1: हाई बियो पापुंग
4: माउगी मापुआनी मियो शिंग ना ऐ कोई दे याम ना तोई ना तोई ना लाइफ है मशी ईशा द करी गुंबा मती अंखरा पांग बदी इपा मानते बो
1: पापू माउगी मुंग मनुंग शो ऐ कोई गी मुंग मनुंग न तबरने ऐ कोई बे मना मना मदल लानो उबा खरा ले ब्रा मशी पापू न खरा सुम थोपी होग रगदी तुंग द काय बाय द स्वयं दन थोलकने ऐ कोई बे मगी द मगता मना मा मदी ऐ ईशा होग शाऊना लेरी मना मना ऐ कोई बे मगी लुहोंग मुमरु असो वम सु याऊ बीरी
4: हाँ
1: अदु का पापू शिम सु यंग
4: करी नो
1: मना मना ऐ कोई बे मगी सना गी लिक अम सा बीरी ने साई डॉक्टर जब तो दा लंबी थोई लोयर मनी लाउरो ना लाउरी ने पावंग सी यंग भी
4: करा करा करा अश मजे दिए भजा करे दा
1: पावंग याम भजा बन
6: पावंग इबे मना बाथरूम दे इसी ना साबले रे ना हायो वे
4: माय कौन है इमो इबे मा
6: पावंग
4: लिक अशिवो नंग ना ना चंद पी की दमंग तो साबी बनी हाय बा
6: कोई पावंग एक कोई इबे मगी ने अदू का पावंग एक कोई इबे मना साक्स से लोयर माले मुई ता मुहाल को मुखों दाबो दे दा साक सा थोक ही नंबर ना हाइस दे की ना थोक चरक पने
4: करी नूने ना शिशि बो इवो नून बगुम मत आवी दा अरुगी या अरुगी
6: है माँ कहीं ना दुग मुने यंग बिरी बतो बो डॉक्टर ना बो कहीं है रागे
1: तो बोल रहे
6: हैं।
2: ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯆꯥꯗꯣ

0: 나 버리 가든 누웠다 보도가 빌딩 사바다 요트기 모토 와시 하바도가 많이
1: 아이야
0: 코일라스 타바기 모타 코일라스 타이브도가 많이
2: 미기 뭐 바가 수만 많아도 바지 까르만 파노
0: 미기 뭐 사가 수만 많다 마차시야 까르만 마차노
2: 오 바부 아이씨 미안나 골모모니 나 이내리 봐 난기나 사는 바똥봉 내 똥봉
0: 하이 까이네
1: 아이야
0: 난 가이게 이빠이사 톡네이시 까이네
1: 아이야 아이제게도 왜 뽁비라미노
0: 까리야바
1: 아이제게도 왜 뽁비라미노 해봐
0: 나마다 한구서 나마 뽁니
1: 바봉 내 입안 늦어버려
0: 아씨 까이네 난 가이게 이빠이사 톡네이시 까임시
1: 아이야
0: 에이 난 가이게 이빠이사 톡네이시 하라디 난 아이기 민세 티로이다바 타박당 아이네 순난이나 마이소 팔로이 아주 디나타다나 싹 살기 일락받으기나 누피 티베 야라시 바오바 이란니 툼망한 말았다나 염시 까리까나바 타박당 그라
1: 나시네 택시가 실로이 막내를 끊이고
0: 까리야 까리야 까리야 하 난 하리시디야 난 아이시 하투오가 아이기 라이리벌 난 툼마얌시에 난 하우치다이 오여오르겐 칼리바나트라 아두디야 난 하나하나오르게 하이 아이오마 아이오마
1: 오이마 오이마
0: 어찌 영혼에 마세
1: 오이마
0: 어찌 영혼아
1: 바봉네 부부다 이 지노래
0: 영혼에 마세
1: 어찌 레바뜨기나 잡을라 올라 오이마
0: 영혼에 마세 마하는 마마하가 까오라 깜비냐사
1: 난 그 깜게 다오리는데
0: 맵자오비 난들 라이레 이방뜨게 이빠이사는 다오리 몽시 양아 깜비야나 노아오고
1: 아이 말레지 뭐 임마
0: 누가 알기들에다 마마하가 하와리 사링하시다 맵자오비 나는 안다 잡기들아 마마 야우들이 오빠마 자세 매트릭 란망함들에 보딩다 담미 레트린다 디엔드라 찡레르미냐
1: 이마 바부나 이질리네 바부나 마친
0: 마야나 공원자 공가 고무다 달레르메
1: 이마 바부나 마친 디네 바부나 이제네 니마
0: 도벨요 텐전 마 가격 뽑는 티나 하이다 마마나 까나네 인절럭다나 노 라이박시 뿜망망나 봐 티카 소부터 개가 하이네 마나
1: 나마우루 비와이 데드나 또 제네 또 보내 봐
0: 까닝데 마수랑 동 떠는가네
1: 아이야 마봉도 디렉터네 디렉터
0: 에이 마봉네 디렉터가 티카 떠는 게 뭐 눕이도 마도 톰보이 쇼아도 그러네
1: 아이야
0: 난 무마네 시엔 기다우리네 하이 아다모라
1: 바봉아 두대노 마부 염치로 보라가 바봉이 타골도 원 먹음 들어 봐
0: 까리야
1: 에라이 라이코 디군드람네 문에 컹치노 아이지네
0: 예
1: 고원 모모니 마사노 방에 학샤와이 이마기므란데 짝비 키게 하시네
0: 예 낭나 바둥 암바디야 아이는 것도 센 타드게네
1: 넘무라 바보
0: 에 와상 아우 캣패스
1: 아이 와상 아우라 바보
0: 에 와상 아우 하리시네 이게
1: 아두데 이노 넘무루 비로 보살레
0: 하
1: 아이누 비지 보살레 아이누 비 부르라
0: 아 나코라 나코라 시끄마이 동이야 바디 바디데 미마 사싱 우드레 마 꽁마루 까이나라니 할락보다 항오이 오빠는 속보동으로 캄캄 란또어니 따오리세 어 까마이 동이야 푸드네 세이드네 영이 까림데 헷까네 되다 어
3: 바봉 바봉
0: 하오네
3: 그 얘기는 코에다 썩나 아이 내가 그거 못 컴도 마 그이 마기가 있을까는 털썩 크리세
0: 어 눕이 시엘로네 에 오부 부살라디 바람네 눕이 이두나 키땅 공군 따라마디 dukan plot ama sinara suyabane smana khangna banu pina bokaya ma thongsaru banoda
3: ado phazena ngangna beadra sumangs to kolawlo ne shiba mi tare di ikai sei
0: phazena ngangna yari bro mai mongsi da launa tra dia launa bage di lekai tarwa ta da na bai na khangda na hinguan gi akoi basi phut kun wang hene chek pan khajali sini tarwa sound proof ni tarwa
3: akoi phabung sidi ma
0: sai ma ge khanma da na ai sha se ai laina hoi din sidori bro khangdi Parece, magi wan mai wa oi jagra sanu se. Ngai ko ngai ko. Isagi ya. Doctor gi pau di. Kamai kamai tora ba.
3: Ngarang tok le.
0: Ha. Kaino. Kaino doctor tambalu er bro hai si bo.
3: Loire pa bon.
0: Ha.
3: Ngasi. Private hospital na mada join to ni.
0: Karia. Private hospital na mada join tong tora ba.
3: Ma koi pa bon ga ma ga. Yaura ni.
0: Kadai da.
3: Kaino. Ai na ngarang da pa bon da hai khidu di.
0: Karia.
3: 바봉담다 구름자게 하야 되나
0: 까이노 하이시 사다다네 모두 구름도라 하리시 뭐
3: 바봉네송가랑다 라알루나알루 하이크리도 뭐
0: 아이 꼭시 야드레 해 아이나 라알루 하르디에 꼭 라알루 되나 누파시엠 바이비시디에 예 폰도 마이 나트라 빠이칼로 되나 아이 다산나 답사게 빠이로 빠이로 빠이로 빠이로
3: 할로 여우라 봐 응, 계속 한번 더. 허이허이. थामे थामे
0: कैबुने कैनु न नङै दबो सोंगि गेट असौबा आहन बसे सङला प यात्र असिगे गेट असंग बसे नबुंगि तोङा पिसक पिने फाट पने सिदिया
3: अस यार से बाबु मि सङे
0: कैबु वाकिंग चले वे फिरोसे कुनि या मुलि ने सिबो सिबो आमो हुतो सिरोइबो
3: हिजोन गिदि कैसु काइदेदा मखोइसु खुंगंगि समसम जबा पुनसिने
0: इस नंग नंग तेबा थागा थिजिने थागा थिजिने मा बाबु यांग थांगनेरम निका ओ हादलाइसिरा तुंगि मसम खेर लिखबा मपाजिरा हासिया सिरा या या मपाज मउ
3: माने बाबु
0: इंगने देने के तवी दे नि से आइ बंगो नोंग या ये मिंग हान कम थो रे वजा वजा बु सोम दे लेंग जे बियो जा जा पिता सोम दे लेंग जे बियो
2: फनी फनी
0: बंगो सोम दे लेंग जे बंगो सोम दे लेंग
2: या नि फो
0: कैनु बंगो
2: करी
0: कैनु कैनु गाड़ी म पान थन ब्रो कैनु गेन मनुंग द थौजे ल पया द्रो बंगो
2: बाबू ए खोय प पेसेंजर ऑटो लाख से बने
0: पेसेंजर ऑटो दा
2: होय अदु बाबू आइने बाबू की फुरित नम लेजर पने
0: करिया करी इशाने की फुरित लाई रही बा इशाने की फुरित लाई रही निने
2: बाबू
0: नुंसिदा आइ इशानु पान दिङा सि फबा मापाय गिने ना लुमान मत्ता कम बक लेर ती मोजा सकेने ना मा बोहे लेर ती होय बा हेमा आइ कोनि हे नंगि फुरित सिदिया याम फजाइने हे कैनु नंजिया तोआने मोजा फुरिम जु यावरिने हे
2: बाबू
0: हस हे मनंगि आइजे मोजा फुरि लैतलेर मिमनिनिया ए नोइदि पाव यम फाउनर मिदा हैमा सिजुआ सोनीनिने आइदि सोनीङ आक्तने सिनेरिसे ए बेमा येङो हे येङो इबुङा आइने मोजा फुरि ङोङ ङोङ खक लैये लै बचप फरक तादनने अदु दहन जन लितनने हौजिति आङो बदो उठ मसूला मजा पूरी से ले रही से भरे है अब तो लिखन गए
2: पूरी मत लगा
0: पूरी मत लगा सीधे से लिखन लगे अरे माँ ये माँ इस बात से मुंह डाब रही है वो है हनुमान हनुमान की मोतियाल का धोखा याद कर रही है इस भजरे है भजरे है हम है ना खेल ले रही
1: था
0: ओजा ओजा बु
1: ओजा बु ठेंगने से हम द्रबदी मसी नना यसी द डॉक्टर टंबल लोरी बसे लोइबंग मम ओजा
0: ओजा बु ओजा बु
1: ओजा की लमंदी मपो मपो खुदिंगा सिमबंग मरे को
0: ए ओजा आइ कोइन इसा सिंग सेमबद ने
1: ओजा बु
0: लमंदी वा हाइने रो सि ओजा
1: ओजा बु
0: आफा बा आंग सेमबद दी इसा मिसा खाइ रो सि ओजा ओजा लमदम सिदा सेन हे पाइखल पगा बहुत एक लेपनिंग बा फाउ रे मिओ सिंग सिदा
1: ओजा
0: बहुत लेपगी महुता लाइर बा आफा बा आंग सेमगा लगे ने खलक पा मिकुप तो मतम दु द बन ब्लॉक ले रो ओजा
1: सुमि सु
0: नम खई वा ठोक ले रो
1: सुमि ओजा सुमि
0: रसी इसान डॉक्टर पा मिकुप से आई त सेंग नुंगाई अदर ओजा इचिन से पेन उंग द लाउ ठोके ओजा
1: फनी फनी
0: लमदम सिदा सेन हे पाइखल पगा बहुत देखते लेपनिंग में भाव रही बमी हुई सिंग बहुत लेपगी महुता लाई रबा भाबा अंग सेम कच्चे अब बमी आमन से अब बमी न लाई गांग लबा मतम दा इरम दम मणिपुर से कांग लम मसे नुंग सी जाने ना हिंग मिन्न बलम दम ओए के दौरी बने सोचा लाउ थो का ने शाजे खंग यांग हे यांग हे
1: नुए से ले ओसा
0: ओसा
1: ओसा कोई गुम मियो ए कया कया थोलक तुना
0: ओसा
1: लंदम मसी के लाइन में मामा मफागी मराय ब थीर के तब मसा सिंगो मराय ब फबो रे सुनो
0: ओसा बु ओसा बु
1: ओसा बु मसी न नाय सिना असम खुदो न मतंग ओसा द तम जबा
0: ओसा
1: ओसा न हरो हरो लो बी बसे उन न नु शिब पाओ दो
0: ओसा बु ओसा
1: दो ओसा लाइन में तो वो थबो कया दी वयो सा के तगी दो ओसा
0: ओसा खुदोल है बसे ममन नाइके थमोई सेंग ने नुक्सी ने बिबी रे इब खुदोल से मसी की ममन अतो पने महुत सिन बया बनती ओसा
1: ओसा ओसा
0: अद बोसा नसी दे साक सार के हनबी को को ओसा साक सार सिन दे
2: बबु ए से गसे प्राइवेट हॉस्पिटल में द जॉइन दोग से गदा
0: नोय जॉइन तो गेरा तो रोयरा नोय नि तानर ना पाई बानी सखुम चंगे हे
2: बबु ए से आदा
0: लाकिरो लाकिरो
2: ए सिलाउने
3: कैनो
2: से से कुदब से कुदब से फजद्रा
3: एमा स्टेम बजे
2: हदनेले
3: एम पामी
0: कैनो मुये मकुम मसागा मा कुदो मसीरी वाले ने आ आ आ इबुंगा
3: एमा
0: आ इब 이사나 닥터 오라가 패션저 옥토데 라이 하이비지 타바다 이파누 아이제디 닥터 하이지디 따루 따난게다 바니도 우푼 와푼 타간 바 야바나테 마힝 마 타이판 바 야바나테 하이디 미 라인 도리바 아소 오픈 바이 도르미도 아두나 이파나 망아르 따루라카 디 타우나라 마다
4: 커리
0: 뚜뚜뚜뚜 아들레리바 하 상고이들레리바 아이20 ngauro ngobase masinang na hayeng ahan ba malai bangam dribau di masi nang matam khara ye lou sa se
4: ye ni ba
0: lou sa lu ne so je pai sa lu ne se ne lou sa lu ne lou sa la kan na puat masing ya makadam ni ne se lou sa lu lou sa lu lou sa lu ko lou lou lou lou
3: akai ba mong si di ne
4: ai de noi pong se kai ba na ba
3: kai no
0: kai lu no डॉक्टर वो रखे इकाई रे दिया मी का माइल लाइंग दूरिया इकाई रे नो शुई इकाई रे तो ये गोई नंग ना कार सी थाव बम तम दा थाव हान भाई बम संगी दा थाव हान बतो नंग ना तोलो पंग त्रिपाव दी यान ना बा कौन ना बा लिसिंग चपी मापुंजी ना सिनर हो
3: चल लोग सलूने
0: Hey, maramu dia, si terlihat pipa ahum subi susu laki ni.
3: Aku tak fungsi ni.
4: Kau ini nampak tu siapa? Nampak tak lihat ini?
3: Nanti bang, mana tahu siapa ni?
4: Aidi, saya pergi cari ke sana. Saya ayam bang amai.
3: Lo salo bang?
4: Saya ayam bang.
3: Ipang ipang ada nak.
4: Bim, aisyong aisyah tiba tak kini minang bo.
3: Aidi ne, hek laut raba. Nang ne, kau dah ugeng wahasi.
4: Nang di kau dah tui ba. Kau dah tui nomba.
3: Nak kau pabung yau reng es dene. Natung dah dum. Ina rada bani.
4: Luar ne.
3: Si, laksa loba.
4: Si aisyah tahu jauh rai kau dah tui nomba.
3: Ipang ipang ada nak. Pangan ni pang ba.
0: Biar mak, tam singjera kiri he. Hei, biar mak, nang sakum tam dah sangat ko he. Nang ni lahir si pagi sumang ni he. Bolong ko na siapa sih kaya orang ya?
3: Aku ibu bung si dini.
0: Si kaya dengan siang mana? Ibu ga?
4: Ibu bung.
0: Nang join tong ni do. Tak tahu lah.
4: Ibu bung pesa.
0: Napai bani saksa tapi dah. Nang halap pengairan tu ni ko. Cala join tong tahu lah.
4: Ibu bung ada siapa sih lagi ibu?
5: Tapi rei sumang lila inama. Lila sigi ani suba saru. Lila shanabi kiba Peacemaker Artist Association gi Lila kangbo. Agash vanim fal hauzi muglan thok chari. Zantra gi khudol da thangzam sanahal singdagi clarionet.

0: खरम संदोक तो नतान जरिबा से आकाशवाणी इम्फालगे एफएम संगाई चैनल दगिने हौजिक ताबिर से मतम गी वाफम दा हुरान बगी तरानी मपू गी नोंमा अईब खोगेंद्र खोमद्राम एडिटर संगाई एक्सप्रेस मणिपुर एडिशन
1: हुरान बगी तरानी मपू गी नोंमा अरब थपक तौरबगी कोचल चेंदुना लोटप मखै लोल उरगा खर कोमथोरक मतमदा मापुना नत्रग पुलिस न फाबदी महौसादगे अदुम तौदुना लाई हौखिब मतम कयागी ममांगदगी नुपी सिंगदा मदी अंगांग नुपी मसा सिंगदा मिद्यंग कारण चंदुना अरब थपक सिंग चथरुब मियै कया सेक्युरिटी फोर्स न फागतुना कोर्ट वायल बिचार चथरब मतुंगदा लोगी ओइब फंगफम थोक पचैराक फंगी सुमी करी करीगुंब मतमगी लैबाक असिद लैरिबा लोगी सिस्टम न मरम ओइदुना मारा लैब मियै कया नानथोकतुना चतखिदाबदी नते अरब थपक सिंग अदुगी चैथें फंगखिब सिंगना चाकन चाकन खांगहौब नतना उपाय लैतबसु याउदब नते मणिपुरदा लिसंगनी कुलहुमदगी मे अहुमदा चुराचानपुरदगी हौरकतुना थोलकलिबा वाथोक सिंगी मनुंगदा हेमानजित अमसुंग लिनथोइंगामबी कौबा महैरोय अनि फाखरगा कोनथंगदा यामना थमोय सोकनिङाय ओइबो फोटो थागलखिबा मदि सिरिबा मतुंगी सक्तमनि हाइबो फोटो थागलखिबा दुदा मियामगी थमोय काइनखिबा दुगी मतांगदा सबसाबा वारोय अमा लैत्री हाइरबसु मरुओइन चेनब मियोय मतम सांग ना कोई लोट खिबदगी थीब खंगलुद्रब मतुंगदा फागतप ङामख्रे महैरोय अनि मांगखिबगी थौदोक असि खक्त नते पुन्न मांगखिब मसिंगदी कुन्थ्रानिथोइसिगी मनुंगदा चपचाबा वारोय ओइरकप याब थबकसिंग लौखलकपदी उद्री हाइबबु हुरानबगी तरानि मपुगी नोंमा हाइनबगुमना अरानब थबकसिंग तौबदा हालेंद्रब मियोयसिंग नोंमदी फंगफम थोकप चैराक फंगलखिबछु यारी मणिपुरदा मतु सोनब नुपी सिंगामदी अंगांग नुपी मचा सिंगदा अरानब मिदियंग ने येंगदुना अरानब थबक सिंग चथखिबा मी मयाम अमा पुलिस न फागतुना लोगी वायल बिचार चथरगा लोगी ओइबे चेराक फंगनखिबा मयाम अमा लैख्रे ngasi ngarang sida sahi humphu suraba nupa amasu sahi kul jelda leibagi chairak lawthokkhibaga loinana hanasu sibagi chairak lawthokkhiba phawba yawre खुनाई असिद नतना मालेम असिगि मियोइब खुनाइबो मांगलिबा ड्रग सिंगि थबक सिंगददि मणिपुर ममिंग चलि हाइबेयाय मणिपुरदा लिसंगनी कुलहुमदगी मे अहुमदगी थौलखिबा इरांग असिना मरम ओइदुना मणिपुरगी वांगमद लैबा म्यानमारदगी ड्रग पुसिलकपगि लम्बिदा अहोंग बखरदि लैख्रे अदुबु मणिपुर मनुंग अमदि अवांग नोंपोक लमदबगी स्टेट सिंगद नतना लैबाक असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लुपाक क्रोर क्रोर न खुजिंग ओइबा मखल मखा कयागी निसा ओइन सिजिनब ड्रग सिंग सेक्युरिटी फोर्स न लेप्टन फगलि हौजिक्ति मणिपुर मचा सिंग अमदि लैबाक असिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी ड्रग की कारबार तौब सिंगद नतना ड्रग पुसिलकपदा नत्रगा ड्रग की नेटवर्क त याव म्यानमार मचा कयासु फागतुना लोगी ओइबे चैराक सिंग फंगनब लैख्रे मियामन पामनब सांगदा ड्रग की किंग पिन सिंग फादे हाइरबसु खर मखैदि फागतप ङामख्रे हाइबे याय लेपु लेप्त्रबदि पुक्सेल सेंगनबु थबक लौखलबदि हुरानबगी तरानि मपुगी नोंमा हाइबगुमना ड्रग की किंग पिन मयामसु फागलखिगनि गवर्नमेंट की थबक थौरमसिंगदा पेंद्रगा करीसु लैतब वाफम अमगीसु फंगनि फंगोय खंगदबद नतना तानब याबनि यादबनि खंगदब दिमानगीसु फुरुप अमना अतोप फुरुप ता हेक्त ताइसिनब मणिपुर खुंदारीब तोंगान तोंगानब फुरुपसिंगी मापान लमगी फाउनबद नतना लाइफलाइन ओइरिब लम्बिसिंग हेक्त थिंजिनबगी चटनबी अमा मणिपुर हौखिब सही कयागी ममांगदगी लैरकलि हौजिक्सु अदु मंगाई लिसिंगनी कुलहुमदैगी मे अहुमगी मतुंगदगी नेशनल हाइवे सिंग मणिपुर खुंदारीब फुरुपसिंगना निंगतमनामदि अकीब याउदन चटप याब लम्बि ओइद्री मसि तराइन लौब याब नते मियोइबगी पुक्साक पुसिलकलिबा लम्बि थदत्प हाइबसि ख्वाइदगी हेन तौहैदब थबकसिंगी मनुंग चनफम थोइ चनसु चल्लि डेमोक्रेसी चतप लैबांगनी डेमोक्रेसी ओइब थौंगसिंगना लैंगाक्तगी डिमान्डसिंग अदु तानब याय अदुबु डिमान्डसिंग अदु तानबगीदमक लम्बि थदत्प हाइबसिदि लैंगाक्त ताइनबदगी हेन्दोक्तुना मारा लैतब मियामदा ताइनरकपनि लैंगाक्त पेन्द्रब मियामना ताइनबगी हाइउरगदि लिसिंगनी कुलहुमदैगी मे अहुमदा चुराचानपुरदगी थौलखिब थौदोक अदुमसु लैंगाक्त ताइनबगी महुता फुरुप अमना अतोप फुरुप अमद ओनसिलकपनि मियोइब खुनाइगी मायोक्त चथरकप थबक सिंग असि यादे Maduda, Jenaba Singi Matakta, Tabak Lokat Kadabani, Haiduna, Laibak Asiki Kwaidigi and the Zauriba Court, Supreme Court, Nakangan Bapawale Krabani. Laibak Asiki Atopa Mapam Singda, Miyamgi, Bukshak, Amadi Lambi Tadatpa, Amadi, Public Property Sing, Mang Takan Bamioi Sing, Amadi, Lup Singi Matakta, Logi Oiba, Chap Chapa Tabak Sing Lokat Kibalai Kre. Adubu Pikraba, Sing Labak, Manipuradi, Han Hanabi Bukunagi Mayukta Labour Tabak Sing as a Pamio Sing Amadi, Lup Singi Matakta, Sap Saba Tabak Sing, Laukat Pagi Pibam Lai Kidre, Haibiyai. Kongjang Jang Shinba Kuding Mag, Huran Baga, Bangkok Nabadi Nati, Haibabu, Mio Bukunagi Satnaroli Wang, Mada Labour Kongjang Ching Jang Shinduna, Miambu Laknabayaba Laknagani, Haiba Sidi, Sumna Loba, Yapam Tokte, Democratic, Oiba Kongjang Nati. Masigumba Sidi, Huran Baga Pankakni, Aran Batabak Taubani, Haina Lobayare, Aran Batabak Taubasing, Adumak Tadok Tuna Tamlabadi, Huran Bagitarani, Mapugi Nongma, Haibadubukaram Tau Krabage Haina, Miyamna Hangarakpa, Hainarakpa Masana Tabani
0: Matamgi Wafam the Tabire, Huran Bagitarani, Mapugi Nongma, Aiba Kogendra Komjam, Editor, Sangai Express, Manipur Edition.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: गुड इवनिंग मैडम
0: गुड इवनिंग गुड इवनिंग तराम नौ चरी का नाय बिरबनो
1: आता गेले खानि बिन नाम ने कैदि बिन नाम नौ कि सोनि मैडम
0: होय होय ताबिनिंग बा फमी सई खन बि बयारानी
1: कोई उरी रही मा धवीरा कोई जो कुमार का जमुना ने बिलास नि गेरा का था वाई नि मा बेमा नु सिनों दम मोई ने तो बुदो
0: हम्म
1: अदु कता से जुमिंदा
0: ಅದಮಕ್ಕಿ ಇಸೈ ದುದಿ ಹೌಜು ಮಕ್ಕಿ ಒಯ್ನ ಕುದೋಲ್ ತಂಬ ಗಮ್ ಜರೋಯ್ ದೋರಿ ಅತೋಪ ಮತಂ ಖನ್ಬಿಯೋ
1: ಅದುದಿ ಅಹೈ ಅಹೈದು ಮುದಸಂದನ ಖಸ್ವಾ ಅಹೈ ದಿ ತುಲ್ಚಿ ನಂಗ ಕಲಿ ಖುನೈ ನಂಗ ಹುತೋಕೆ ನ ತೋಪ ಮತ ಮಣಿಪುರ್ ಗಿ
0: ಮತಂ ಗಿ ಮಣಿಪುರ್ ಫಮ್ ಗಿ ಕ್ವಾ
1: ಹೋಯ್ ಹೋಯ್
0: ಹೌಜಿ ಸಿಬು ಕೈ ದೋ ಬಿರಮಿನೋ
1: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಮ ನಾ ಓ ಸೈ ಸಿ ಚಾರಗ ಸಂ ಮಂಗೇರಾಂ ಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಿ ನಾ ಜರಂ ಬನಿ
0: ಹ್ಮ್ হয় হয় ইসাই এসিগি সাইরিং বা মদি সাইরাং বা নিসিং বিব্রা
1: ফুলেন দো মালে ফুলেন দো আদুগা কেন ফুলেন দো না কেন দো আদুগা আমা সাইরাং মদি কাউকে কাউকে সাইরিং মদি ফুলেন দো এরকম গেল
0: হয় হয় সাইরিং বা শ্যাম চুম না তাক পিরে আদুগা সাইরাং বা না আরিবম শ্যাম শর্মা নে
1: হয় হয়
0: ইয়াম নুঙাই জাই গাসিগি গুড ইভিনিং মণিপুর গি আহান বা কলার ওই নারি সাহ ফোন যাব
1: হাইবিও
0: হাইবিও হয় হয় যদি সেই কুদল তামজারগে ম্যাম পুনে তামিন আছে
1: থ্যাংক ইউ ম্যাডাম
0: থাকা চারি

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग. ये गुड इवनिंग
0: दा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग तराम नाउ चरे मिंग लाइफ ऑफ माय बी
1: अवांग लेकिन छ बिजेगी हम संगम संगीता ने दा
0: संगीता को करी सही तासी के
1: लाइव की नि खल लगे हर फिल्म दगे ना बोजा पुष्पा आई ने सपा हवाई दगे से छे ना तामु जें तो उठे जें ता जें
0: लाइव की नि खल लगे फिल्म दगे थवाई दगे सु हे ना नुंग सी जे.
1: ओ
0: हो होय संगीता से हो जिक्स बु चा इसिंग चा बि खबरो गुड इवनिंग मणिपुर की थरुम थरुम सरुक याबिरक्प खोइदा बिबै सै खुदोल तम अगे मयाम पुन तामिनसे थागचिरि खोइदा बिदुना खनबिरकलिब इसै असि लाइब किनि खल्लगे फमसि दगिनि सैसकलिबि पुष्परानियामदि नाउ बॉय सैरेंगबा ब्रोजेंद्र वाहेंग चामदि सैरांगबा आरके जितेन

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थरम दा तराम नोक चरी कना होई बिरबनो।
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिंग लाइफ हम हाई बियो,
1: ए थांगा दे नी
0: मिंग हाई बियो।
1: थांगा दे जे अमिला।
0: अमिला करी करम बा फम गे सही तासी
1: नमी सही रो मैंने पूछे ही रो
0: फम ही सही नी
1: नमी सही ने
0: होई होई
1: ओ फेन था जे ना बोले सिंगे ना वो क्या बस वाली ने सफा ताज़ा दिनी
0: करी इसाय अहो बम अतिक तुम तंग पन बियो
1: ओ आई जो इधर बस संसार से तो तो
0: आई गी ओ इधर बस संसार से अमिला से फोन फंग बिरी से ngasin ahan bra
1: आ ngasin ahan bani
0: atopa akoi gi akashbani infal gi life on in program gi tharum sing da su amukta phang bi dribra
1: a adu ya kan kula tanung di rum phang
0: hoi good afternoon ladies ki tharum da kwa adu ga isai khan bagi sidin ngasin ahan bane ba
1: ngasin ahan
0: bane yam nungai jai kwa isai khan bagi tharum da ahan ba caller oi na wari sa ba phang jaba adu ki matik nungai jai adu ga laibak phaba haiba suni ngasi gi numiche isai kudol tam jarak pa yara ja
1: aya ni meda
0: thagat chari khoida bidena khan bi rakli ba sam viral thagi angau balai chil isai sibu saisak li ba sing di sofia amadi now boy sairing ba and devesor sairang ba s sagol sem tijen

नमाज से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: किशोर कुमार में दिलाता मंगेशकर अनि अपुन बखोंजल द गेट में तापिरे मथंग दमु लांथोक चरी मोहम्मद राफी में दी आसाबोसले देखी गीत मा
1: अभी न जाओ छोड़ कर

बिल्कुल, जैसा वादा रहा हम भी आ चुके हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम हर श्रृंगार लेके, और मैं हूँ आपके साथ रितिका, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। '92 में आई फिल्म खिलाड़ी का आपने ये गीत सुना, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में अनवर सागर का लिखा ये गीत और जतिन ललित का संगीत। भाई दिलबर सामने हो तो दिल कहाँ मानने को है ना? तो बस इन्हीं प्यार भरे की गीतों से ये जो कार्यक्रम है वो पिटारा जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बस बने रहिएगा हर श्रृंगार कार्यक्रम के साथ, और अगला गीत दिल है कि मानता नहीं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. और कहते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बस बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की. तभी तो कह रहे हैं कि हम मुलाकात तो हमारी आप इन गीतों के माध्यम से हो ही रही है. कैसा लग रहा है? आशा करती हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोगों के लिए चुन चुन कर हम लेकर आते हैं ये प्यारे से खूबसूरत से रोमांटिक गीतों का पिटारा. कहाँ पर? हर श्रृंगार में. जी हाँ, अगला गीत भी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, किंग अंकल का.

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में, जो कि आएगा 11:10 पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: फिर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना, ना।

0: Pelle'den aklı mıskırayı.
1: भाई हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि यही तो मिलता है एकदम खरा सोना, असली सोना, यानी कि ऐसे खूबसूरत प्यारे से गीत जो कहीं और आपको नहीं मिलते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत, और अभी जो आपने ये गीत सुना कल आज और कल फिल्म का, शंकर जय किशन का संगीत, और इस गीत को लिखा नीरज ने और इस गीत को आवाज दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

प्यार बिल्कुल यूं ही बरकरार रहेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब मुझे अपनी दोस्त रितिका सैनी को दीजिए इजाजत। गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सरगोशी करती हुई हवाओं के बीच चांदनी में नहाई हुई इस रात में शुरुआत करते हैं आपकी अपनी महफिल जिसका नाम है निशिकंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ अंजू स्वागत करती हूं आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार

वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है, वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, अभी रात बहुत है।

वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, कि दिल बहुत बेकरार है तुझे धड़कन में बसाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू।

इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं कोई शय दिल को बहलाती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, इस दिल का हर एक कोना तुमसे है, तुम बिन तो हम कुछ भी नहीं है हम सफर, क्योंकि मेरी जिंदगी का पूरा फसाना तुमसे है।

पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रूह का एक साया हूं मैं।

दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 1:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी

0: सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी वो वंचित हो सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ अंजू. कार्यक्रम लेकर आए हूं गीत सुहाने. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें. जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें. ईद के चांद का दीदार का बहाना ही सही.

जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ, जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ कि ये फूलों के चेहरे भी फिजा चाहते हैं।

नजरों का धोखा है या भोली है तुम्हारी सूरत, नजरों का धोखा है या भोली है तुम्हारी सूरत, कि इस कमसिन उम्र में भी गजब की कयामत हो तुम।

क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है कि एक दिन का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी लगने लगते हैं पराए जब एक अजनबी जिस पर बहुत एतबार हो जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक शाम आती है तुम्हारी याद लेकर और एक शाम जाती है तुम्हारी याद देकर. कब आएगी वो शाम जो आए तुम्हें अपने साथ लेकर.

पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, आज तूने फिर पुकारा तो फिर उन गीतों को दोबारा से जीना आ गया।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रात समय लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागी

0: भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमनिक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह तलाक भरण पोषण बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Support on Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 3081.35 crore persons covered under National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power, road sectors, covering 9 states and worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. While reviewing Ken-Betwa interlinking project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. The Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to the cost escalation, but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi attended a high-level review meeting chaired by Union Home Minister Amit Shah to discuss issues concerning sugarcane and onion farmers. In a social media post, Mr. Joshi said that the meeting focused on addressing farmers' concerns and strengthening government support mechanisms to the sugarcane and onion sector. The minister said that the government is committed to safeguarding farmers' interests and enhancing ease of doing business in the agricultural sector. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis were present during the meeting. The Supreme Court yesterday upheld the legality of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls being conducted by the Election Commission of India. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match at New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target to 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Indian shooter Isha Singh yesterday broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जब से देखा तुम्हें इन आंखों ने, दिल बस तेरा ही दीवाना हो गया। अब किसी और की तमन्ना नहीं हमें, तुम्हें सोचना ही जीने का बहाना हो गया।

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

हर बात मेरे लिए बहुत खास है, तेरी हर अदा हर बात मेरे लिए खास है, शायद यही प्यार का पहला एहसास है।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी माधुरी कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें

0: पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। ये बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period with an outlay of 25,530 crore rupees, a central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through TDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and Gobar Dhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways power road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. The Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has rejected the allegations regarding the award of exam evolution contract to a Hyderabad-based educational technology company, Coimt EdTech. In a social media post, the CBSE said that the allegations are erroneous, misleading and not based on facts. The board said that it has followed the general financial rules protocol scrupulously in the awarding of the contract with the agency. It informed that the board floated the RFP for digital evaluation of answer books for board exams 2026 on Central Public Procurement Portal in August last year and awarded the contract to the qualified bidder. The Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, has welcomed the emergency pharmaceutical supplies donated by India to support the ongoing response to Bundibugyo Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. In a social media post, Africa CDC said that the supplies, including essential diagnostics, therapeutics, infection prevention and control materials, and case management support that will soon be deployed to affected communities in eastern Congo. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और ये सफर जिसका नाम है हमराही लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। तो हमराही कौन होते हैं दोस्तों, जब रास्ता मिल जाते हैं और रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं, हम राह हो जाते हैं, तो वो हमराही कहलाते हैं। और हमराही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं हमारे बॉलीवुड के डुएट सॉन्ग्स, युगल गीत, तो आनंद लीजिए।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

भाई कह देने में फायदा है क्योंकि दिल की बात अगर दिल में रह गई तो सामने वाले को कैसे पता लगेगी। जैसे अब हम बता रहे हैं कि ये जो गीत सुना आपने ये सुना फिल्म दीवार से किशोर कुमार आशा जी की आवाज में और संगीत आरडी बर्मन साहब का। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म अभिमान से।

आशा और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से आरडी बर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं

ये गीत सुना आपने फिल्म आ गले लग जा से किशोर और लता की आवाजों में और अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले एक शेर भी पहुंचाना चाहते हैं या कहें कि एक बात कहना चाहते हैं कि वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था

हीरा पन्ना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप लता और किशोर की आवाज में और समझती हूँ कि आपको ये गीत भी बेहद पसंद आया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते

0: के लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही के सफर में माधुरी है आप सभी के साथ। मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, गुस्सा करके मुझसे खुद भी परेशान रहता है।

रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का गीत सुन रहे थे आप किशोर और लता की आवाज में आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत आप तक हमने पहुंचाया और खजा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की और मोहब्बत करने वालों का तो यही अंजाम होता है जहां दुख दर्द है वहीं तो मोहब्बत भी है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूरदराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत

दुख तो अपना साथी है ही, लेकिन दुख ये भी कहता है कि चाहे रात जितनी भी लंबी हो दुख की, सुबह जरूर आती है, खुशियां जरूर लाती है।

जिंदगी के सफर में यूं तो बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीवन तो यही है। जीवन में जहां रात है वहां दिन है, शाम है तो सुबह है, पहाड़ हैं तो पठार भी हैं, और यही जिंदगी की रीत है कि खुशी आती है, गम आता है, और फिर से एक बार अपनी मेहनत से इंसान खुशियों को समेट लाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 4:25 और हो चुके हैं पूरे 46 सेकेंड। ये सफर है अरुणिमा का। जीवन में जब भी कभी मौका मिले तो आप सारथी चुनिएगा, स्वार्थी नहीं।

कभी छोटी तो कभी बड़ी बातों पर गुस्सा हम सभी को आता है, कभी बच्चों पर तो कभी बड़ों पर तो कभी बूढ़ों पर गुस्सा हम सभी को आता है, पर जिसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाया उसे नियति उससे पहले पराजित करती है। तो गुस्सा तो आता है लेकिन उस पर अंकुश भी जरूरी है।

आकाश वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर है अरुणिमा का. याद रखिए इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता लेकिन हाँ जो कोशिश करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है.

0: कभी कभी।
1: दिल से हार न मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है।

0: रहे।
1: कुछ न कुछ बात तो हम सभी में होती है, गलत लोग सबक बन जाते हैं, अच्छे लोग याद बन जाते हैं, और आप क्या बनते हैं ये तो आपके हाथ में है।

हर उम्मीद की एक छोटी सी कहानी होती है और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले और जब फूलों की तमन्ना होती है तो जरूर हमें कुछ ना कुछ कांटे भी चुभते ही हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400 गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं

0: को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंपती है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य में सीमा के लगभग 1600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that the rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. The Supreme Court Collegium recommended the elevation of Chief Justices of 4 High Courts and Senior Advocate V. Mohanna as judges of the Apex Court. According to a statement uploaded on the top court's website, the Collegium, headed by Chief Justice of India Surya Kant, held its meetings on May 22nd and May 27th. It has recommended the elevation of Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Sri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Arun Palli, and Mohanna as judges of the top court. The Apex Court presently has 32 judges, including the CJI. 2 sitting judges of the top court are set to retire next month. Currently, Justice B.V. Nagaratna is a lone woman judge in the Apex Court. Nohana's appointment as a judge of the apex court will add to the women's representation on the bench. Recently, the government had promulgated an ordinance to increase the strength of the Supreme Court from the present 34 judges to 38, including the CJI. President Draupadi Murmu will confer the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police at the Palchur Stadium in Gangtok today. Sikkim will become the 15th state of the country and third from Northeast to receive this award. The President's Police Colour is the highest ceremonial honour awarded to a police force in the country in recognition of exceptional service, unwavering discipline and dedication to the nation. A contingent of 400 proud Sikkim police personnel led by a SSP rank officer will take part in the parade in front of the President. The recognition stands as a proud tribute to the commitment, sacrifice and professionalism displayed by the brave personnel of Sikkim police in serving the people and safeguarding the state. In Uttar Pradesh, Eid-ul-Azha is being celebrated with religious fervour across the state. Administration has made elaborate arrangements and taken precautions for the smooth celebration of Bakrid today. State government has issued an advisory directing all district police chiefs to ensure that no new tradition should start and no sacrifices restricted animals should take place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Cyprus to participate in the informal meeting of the EU Foreign Affairs meeting, Gimnish. In a social media post, the External Affairs Minister thanked Vice President of the European Commission, Kaya Kallas, and Foreign Minister Cyprus, Dr. Konstantinos Komdos, for the invitation. External Affairs Minister S. Jaishankar and his Ukrainian counterpart, Andrei Sybiha, discussed the ongoing Russia-Ukraine conflict and efforts aimed at achieving a comprehensive and lasting peace. The meeting took place on the sidelines of the informal meeting of European Union foreign ministers, known as the Gimnish Forum, in Cyprus. Jaishankar, in a social media post yesterday, described the interaction as a useful meeting and said the two sides exchanged views on the Ukraine conflict and discussed bilateral cooperation. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminative match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और देखिए ना, बाहर भोर हो चुकी है। भोर सुहानी लेकर माधुरी है आप सभी के साथ, और माधुरी कहती है आप सभी को सुप्रभात।

0: सत्य सच जिससे जीवन सुखद और शांत होता है। हम सभी एक दूसरे से सत्य सुनना चाहते हैं, पर सत्य सुनना जितना चाहते हैं उतना सत्य हमें कहना भी होता है। और ये सच है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सच होता है।
1: मैंने

जी हाँ, हर किसी का अपना सच है। ये जरूरी नहीं कि जो हमारा सच है वो सभी के मानकों पर खरा उतरे, और ये भी जरूरी नहीं कि सबका इस संसार को देखने का अपना तरीका है। तो इसीलिए सबका सच भी अपने अपने तरह का सच है। ये अलग अलग नजरिया ही हमारे सच को अलग अलग कर देता है। इसी आधार पर सब अपने सत्य की परिभाषा बनाते हैं, गढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सच है कि हम सभी सच ही तो सुनना चाहते हैं।